0: पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, जिनमें पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस भी शामिल थे। भारत की मिसाइलें कुछ ऐसी बरसी उस रोज कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया।
1: जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया।
0: देश उस अभूतपूर्व घटना की पहली वर्षगांठ पर अपने जाबाजों के शौर्य को सलाम कर रहा है। इस खास दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सेना के पराक्रम को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की। पीएम मोदी ने संस्कृत श्लोक के जरिए सेनाओं के साहस को सलाम किया है। उन्होंने लिखा, उद्दीर्ण मनसो योद्धा वाहनानी च भारत यस्याम भवंती सेनायाम ध्रुवम तस्याम जयम वदे, यानी हे भारत, जिस सेना के योद्धा ऊंचे उत्साह और मजबूत मनोबल वाले हों और जिसके पास अच्छे वाहन और साधन हों, उस सेना की विजय निश्चित मानी जाती है। एक और पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अद्वितीय साहस, सटीक प्रहार और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिमाकत करने वालों को कड़ा जवाब दिया। पूरा देश हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। इसने हमारे सशस्त्र बलों की तत्परता और समन्वित शक्ति को भी उजागर किया। साथ ही इसने हमारे बलों के बीच बढ़ते समन्वय को प्रदर्शित किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली मजबूती को दुनिया के सामने उजागर किया। आज एक साल बाद हम आतंकवाद को पराजित करने और उसके सपोर्ट सिस्टम को नष्ट करने के अपने संकल्प में पहले की तरह ही दृढ़ हैं। तो वही ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर वायुसेना ने अपनी योद्धाओं की वीरता को याद करते हुए एक वीडियो जारी किया। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी तैयारियों और तत्परता की एक अद्भुत झलक पेश की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर सेना के शौर्य को सलाम किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं, जिनके साहस और समर्पण से देश हर वक्त महफूज रहता है। ऑपरेशन के दौरान सभी सेनाओं की सटीकता और बेहतरीन तालमेल की झलक मिली। इस ऑपरेशन ने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक मिसाल कायम की है। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक है। ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि हमारे सशस्त्र बल हर हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह के मौके पर तीनों सेनाओं ने जयपुर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य ऑपरेशंस के इतिहास में गोल्ड स्टैंडर्ड करार दिया। सेनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगली बार युद्ध क्षेत्र भी भारत तय करेगा।
2: ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने पर जयपुर में एक खास जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बीच सिनर्जी यानी जॉइंटनेस पर बातचीत की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक खास मूवी रिलीज करते हुए भारत के उस डॉक्ट्रिन को दोहराया, जिसमें आतंकवाद का जवाब कड़ा हमला होगा। पाकिस्तान के भीतर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से न सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हमले का जवाब देते हुए भी उसे भारी नुकसान पहुंचाया गया, ये सब यहां जयपुर में एक बार फिर इस बात को दोहराते हुए कहा गया।

0: कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें महज एक पॉज यानी एक छोटा सा विराम आया है और अपनी तैयारी को लगातार भारत आगे ले जा रहा है।
1: सरकार और सेनाएं ही नहीं बल्कि देश भर में शहर शहर आम लोगों ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह को बेहद उत्साह से सेलिब्रेट किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बेटियों ने सेना के शौर्य को याद करते हुए ऑपरेशन सिंदूर वाली रंगोली तैयार की।
2: ऑपरेशन सिंदूर है, आज उसको हुए पूरा एक साल हो गया है, तो लोग जो हैं जिन लोगों की ऑपरेशन सिंदूर में जान गई और जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने वहां पे स्ट्राइक्स की, तो उन सब चीज़ों को लोग जो हैं अपने देश की जो चीज़ें हैं, देश के जो बलिदान हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, उनको भूल ना जाएं, इसलिए जो है आज ऑपरेशन सिंदूर की जो सालगिरह पे हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम नेशनल हाईवे पे एक रंगोली बनाएंगे ताकि आते जाते लोग जो रंगोली को देखें और उसमें पढ़ें कि ऑपरेशन सिंदूर, ताकि उनको पता चले कि आज ऑपरेशन सिंदूर को हुए पूरा एक साल हो गया है।
3: यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि ये दिन कोई भूले ना, ये दिन को हमेशा लोग याद रखे कि इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई थी पहलगाम में, वो ये सब याद रखे और हमारे ये ट्रिब्यूट इसीलिए ताकि ये दिन सबको याद रहे और आज इस दिन को एक साल हो गया और CRPF वाले लोगों ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया।
1: कुछ ऐसा ही जोश नजर आया जम्मू के अरनिया गांव में। अरनिया गांव भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद नजदीक है। यहां के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से हो रहे प्रहारों को करीब से देखा और झेला है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत, जरूरत और कामयाबी से आए बदलाव को इनसे ज्यादा शायद ही देश के किसी और इलाके के लोग समझ पाए।
4: ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत जरूरी था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले अस्थिरता फैली हुई थी, जहां तक कि जहां से माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती थी। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जहां अभी चल रहा है, इससे हमारे एरिया में बिल्कुल शांति है, किसी तरह की अब कोई भी परेशानी नहीं है। बिल्कुल जब पहले तो मोटार पर शेलिंग चलती थी ना, अब तो एक गोली तक नहीं चलती, बिल्कुल शांति है। ये जरूरी था, ये अपनी ये तो 1980 से हो जाना चाहिए था। हाँ, तो आर्मी ने जितना जवाब दिया बहुत बढ़िया दिया था, अब पाकिस्तान तब से बिल्कुल चुप है, शांत है ये। अब पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है कि हमें कोई डिस्टर्ब करे।
5: सर, ये तो जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी भी कंटिन्यू है, साथ में ये नया भारत है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। ये जब भी कुछ होगा घर में घुस के मारेगा, चाहे कोई भी हो, सिंदूर चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से आवाज नहीं आएगा। यहाँ से खींच के कोई 2-2.5 किलोमीटर के पास में पाकिस्तान है, तो आप गवर्नमेंट का हाल देख ही सकते हैं कि बच्चों के दिल में कोई परेशानी नहीं है, कोई खेल रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। ये बहुत बढ़िया ग्राउंड है अरनिया की, और साथ में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इससे लोगों को पता चल गया कि अब आर्मी का जो मनोबल है बहुत बड़ा हुआ है।
1: ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के मौके पर जम्मू कश्मीर के नागरिक उत्साहित हैं और सेना सतर्क। इस मौके पर गुरेज सेक्टर में सेना ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। इंडियन आर्मी के जवान हर पल मुस्तैद हैं, निगाहें चौकस, इरादे पक्के और संदेश साफ। साल भर पहले जो देखा था वो बस ट्रेलर था, अब भारत पर जो चोट करने की कोशिश करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर बुरी नजर डाली तो भारत हिसाब भी लेगा और जवाब भी देगा, और उस जवाब की गूंज सारी दुनिया को सुनाई देगी।
6: भारत माता की जय।
1: जयपुर से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की पश्चिमी सीमा यानी पंजाब बॉर्डर पर तैनात आर्मी एयर डिफेंस कोर के जवानों ने पाकिस्तान को कभी ना भूलने वाला सबक दिया था। जब पाकिस्तान ने कई मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन्स के जरिए भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मौजूद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, सरहद पर आसमानी कवच देने वाले एयर डिफेंस कोर के इन योद्धाओं की मौजूदगी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी बन गई थी। ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर GNT पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचा और मुलाकात की इन जांबाजों से जो भारत की सीमाओं का अभेद कवच हैं।
8: सर पूरा
6: जब जब शत्रु अपनी हद भूला, जब जब दुश्मन के दुस्साहस ने अपना सर उठाया, तब तब भारत के रणवीरों ने इतिहास के सीने पर अपने शौर्य की स्याही से ऐसा गर्व भरा अध्याय लिखा जिसका सबक देश का दुश्मन कभी भूल नहीं पाएगा। ये तैयारी है उसी सबक की, ये तैयारी है आक्रमण की। सरहद पर इन जाबाजों की मौजूदगी हमारी सुरक्षा की गारंटी है। हमारे वीर जवानों की निरंतर मौजूदगी और चौकसी हमारे देश को अभेद्य सुरक्षा मुहैया करवाती है। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर इन शूर वीरों की वजह से दुश्मनों का हर नापाक मंसूबा धराशायी हो जाता है। आर्मी एयर डिफेंस कोर के इन रणबांकुरों की वजह से भारत की पश्चिमी सीमा पर देश को एक और अजय आसमानी कवच की सुरक्षा हासिल है। नव के रास्ते भी दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना की ये जवान हमेशा तत्पर हैं। पिछले साल पाकिस्तान की साजिशों को जवाब देते हुए देश के इन योद्धाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। ZU-23 नाम की इस एंटी एयरक्राफ्ट गन ने पाकिस्तान की आसमानी साजिश को तार तार कर दिया था। कम ऊंचाई वाले विमान, हेलीकॉप्टर्स और हल्के बख्तरबंद वाहनों के लिए ये काल है।
8: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन के हमलों को नाकाम करने में भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये अब हम आपको दिखाते हैं ZU-23, जो एक पुराना एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है। ये पुराना जरूर है लेकिन इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मारक क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया। सरहद पर पाकिस्तान के सैकड़ों जो मिसाइल हैं, ड्रोन हैं और दूसरे एयरक्राफ्ट हैं, उनको नेस्तनाबूद करने में इसकी भूमिका रही। इसकी रेंज की हम बात करें 2.5 किलोमीटर तक आकाश में आने वाले दुश्मन के किसी भी टारगेट को, किसी भी हेलीकॉप्टर को, किसी भी ड्रोन को ये आसानी से नेस्तनाबूद कर सकता है। और अब ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने के बाद भी इस वक्त भारत पाकिस्तान सरहद पर जो ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो पूरी तरह से तैनात है।
6: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस ट्विन बैरल एंटी एयरक्राफ्ट गन ने 2.5 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान के ड्रोन को तबाह कर दिया। जमीन पर खड़े खड़े आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहे पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही खाक कर दिया था और दुश्मन के 2 एडवांस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था।
9: आपके सामने ये ZU-23 MM ट्विन बैरल गन है। ये आर्मी एयर डिफेंस की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर के अंदर ये दुश्मन के किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यूकैव और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है।
8: अगर मैं आपके अनुभव को देखूं, आप एक युवा अधिकारी हैं, आपका क्या अनुभव रहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरह से दुश्मन के साथ आपका एंगेजमेंट रहा?
9: देखिए, मुझे मेरे सैन्य जीवन के बहुत ही प्रारंभिक दौर में ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने का अवसर मिला। मेरे अनुभव की बात करूं तो 7 और 8 मई की रात को 2 दुश्मन के ड्रोन हमारे क्षेत्र के निकट आए। वे बड़ी निशब्द और तेज़ गति से हमारी ओर आ रहे थे, पर हमारे सैनिक पूरी तरीके से सतर्क थे। हमारी जवाबी कार्रवाई बहुत ही अनुशासित थी। हमने सटीक फायर किया और कुछ ही क्षणों में दोनों ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया।
6: आर्मी की एयर डिफेंस कोर के तर्कश में एक और योद्धा है, नाम है इगला एस मिसाइल। दागो और भूल जाओ की तर्ज पर काम करने वाले इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की वजह से दुश्मन थर्राता है।
8: हम आपको भारतीय सेना के एयर डिफेंस के एक और घातक हथियार इगला मिसाइल दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान सरहद पर भारतीय सेना की एयर डिफेंस की जो यूनिट है वो इगला मिसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं। ये शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जिसको फॉरगेटन फायर मिसाइल कहा जाता है, यानी कि दुश्मन के किसी भी टारगेट पर एक बार निशाना साधने के बाद, जैसे आप इस वक्त आप देखें एक ड्रोन को टारगेट किया जा रहा है, उस पर निशाना लगाया जा रहा है और एक बार निशाना लॉक होने के बाद आप देखें एक दुश्मन का एक बड़ा ड्रोन, एक छोटा ड्रोन इस वक्त आसमान में नजर आ रहे हैं।
6: रूस में निर्मित इगला एस दुश्मन के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को 5 किलोमीटर दूर ही मार गिराने में सक्षम है। 2,266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ने वाली ये मिसाइल दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं देती।
10: जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इगला का एक सेक्शन है जिसके अंदर 2 डिटैचमेंट है। इसके कारण इसकी इफेक्टिविटी और बढ़ जाती है। ये बहुत ही आसानी से एयरक्राफ्ट, दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और आपके यूएवीज को बहुत ही आसानी से ट्रैक करके इनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये एक हीट सीकिंग मिसाइल है जिसका रेंज 5 किलोमीटर है, जिसके कारण इसको हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी डिप्लॉय करते हैं, उसके कारण इसकी इफेक्टिविटी और बढ़ जाती है।
6: इसी क्रम में इंडियन आर्मी के पास एक ऐसा स्वदेशी सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुश्मनों के लिए बेहद रिस्की साबित हुआ। आकाश टीम पूरी तरह से स्वदेशी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो देश की आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क का सबसे मुख्य योद्धा है, जो रियल टाइम में दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल्स और विमानों का पता लगाकर उनके वजूद को ही खत्म कर देता है।
8: इसके आकाश तीर की बात की जाए तो ये थल सेना, वायुसेना के जो रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको एक साथ युद्ध के मैदान में सैनिकों तक पहुंचाता है, जिससे हवाई मोर्चे पर दुश्मन के किसी भी मिसाइल, किसी भी ड्रोन और किसी भी हवाई हमले को तेजी के साथ नेस्तनाबूद किया जा सके।
6: इसी तरह आर्मी या डिफेंस कोर का मजबूत प्रहरी एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 एक मिनट में 3.5 किलोमीटर तक 500 राउंड फायर कर सकता है। बॉर्डर पर इस गन सिस्टम के साथ ही वही जवान तैनात हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन्स को मार गिराया था।
8: अब हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर डिफेंस के मोर्चे पर वो एंटीएयरक्राफ्ट गन दिखा रहे हैं जिनका इस्तेमाल उस दौरान किया गया। बात चाहे L-70 गन की बात करें, जो पंजाब सरहद पर तैनात थी और जिसने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले जो 9 और 10 मई के दिन छोटे बड़े ड्रोन थे उन्हें मार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई, ये वही गन है जिसका इस्तेमाल किया गया Ju-23 गन के साथ ही L-70 गन, जो कि एक बहुत कारगर गन है। इसकी रेंज की अगर बात की जाए, मारक क्षमता की बात करें तो 3.5 किलोमीटर हवा में दुश्मन के किसी भी हवाई टारगेट को ये निशाना बना सकती है। एक मिनट में 500 राउंड ये फायर करती है और सबसे खास बात, ये सभी वो जो जवान इस गन पर तैनात थे ये वही वीर जवान हैं जिन्होंने ठीक एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जब गुजरात से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर की सरहद पर सैकड़ों ड्रोन भारत के खिलाफ छोड़े, उस दौरान इस L-70 गन ने बहुत कारगर भूमिका निभाई।
6: 5000 फीट से कम ऊंचाई पर होने वाले हवाई हमलों को रोकने में अग्रणी आर्मी एयर डिफेंस कोर का आदर्श वाक्य है आकाशी शत्रु न जही, जिसका मतलब है आकाश में ही दुश्मन का नाश करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये ब्रिगेड इसी उद्घोष को मूल मंत्र मान दुश्मन पर टूट पड़ी।
11: ऑफ सिंदूर एक बहुत ही हाईली सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें आर्मी एयर डिफेंस ने क्रिटिकल रोल प्ले किया है। इसमें दुश्मन के जितने भी अटैक थे उनको हमने विफल तो किया ही, पर एक आधुनिक युद्ध में कैसे जीत हासिल करनी है उस काबिलियत को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने दर्शाया है। पूरी की पूरी जो हमारी पश्चिम बॉर्डर है और स्पेसिफिकली पंजाब जहाँ हमारी ED ब्रिगेड डिप्लॉयड है, उसमें पूरे रडार तथा गन, कम्युनिकेशन सिस्टम, काउंटर ड्रोन के लिए कुछ हार्ड और सॉफ्ट किल सिस्टम और मिसाइल जैसे कि आकाश मिसाइल, ये पूरे के पूरे इंटीग्रेटेड थे हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि आकाश तीर है उससे।
6: सरहद पर आर्मी या डिफेंस कोर के इन वीर जवानों के रहते किसकी हिम्मत होगी जो भारत की हवाई सरहदों को लांघने की हिमाकत करे। वैसे भी 10 मई 2025 को जिस पर विराम लगा वो ऑपरेशन सिंदूर का पहला चैप्टर भर था। उसके बाद से लगातार भारतीय सेना फुल एक्शन मोड में है। शत्रु को ये एहसास भी है कि भारत के खिलाफ उठी एक चिंगारी भी उसे राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल की आज के हमारे इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get.
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
8: 2027 की ईद इस बार काफी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन पर इस बार दो सुपरस्टार्स के टकराव होने वाले हैं। जहां हमेशा की तरह बॉलीवुड के भाईजान फैंस को ईद पर अपनी नई फिल्म का तोहफा देंगे, तो वहीं इस बार साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास भी संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में उन्हें टक्कर देने के लिए स्पिरिट के साथ बॉक्स ऑफिस पर धावा बोलेंगे।
9: बॉलीवुड में ईद मतलब सलमान की फिल्म रिलीज होना है, लेकिन साल 2027 की ईद सलमान के लिए लेकर आ रही है तगड़ा कंपटीशन। 2027 की ईद पर सलमान से भिड़ने को तैयार हैं सुपरस्टार प्रभास। दरअसल प्रभास और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म स्पिरिट के मेकर्स ने साफ किया है कि ये फिल्म अपने तय वक्त पर ही रिलीज होगी। मेकर्स की ओर से ये जानकारी भी दी गई है कि फिल्म बिल्कुल तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ रही है और ये 5 मार्च 2027 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसमें किसी भी तरह की कोई देरी या पोस्टपोनमेंट जैसी कोई बात नहीं है। इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। हालांकि उसी दौरान ईद है और ईद पर सलमान खान की भी अगली फिल्म आ रही है, ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश होना तय है। सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म को ईद पर रिलीज करने का ऐलान किया था, जिसका निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि प्रभास की ये फिल्म सलमान की अपकमिंग मूवी से क्लैश कर सकती है, जिसके बाद खबरों का बाजार गर्म हुआ कि स्प्रीट के मेकर्स बॉक्स ऑफिस टकराव से बचने के लिए फिल्म को दिसम्बर 2027 तक पोस्टपोन करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अब मेकर्स के बयान के बाद साफ है कि फिल्म तय तारीख पर ही रिलीज होगी और अब बॉक्स ऑफिस पर पहली बार सलमान खान और प्रभास के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बॉक्स ऑफिस की ये टक्कर भले ही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इसमें फायदा दर्शकों का ही होगा। भाईजान के फैंस को एक बार फिर ईडी के रूप में उनकी फिल्म देखने को मिलेगी, तो वहीं प्रभास के फैंस भी वांगा के डायरेक्शन में अपने हीरो के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
8: अयोध्या में रामलला के साथ ही अपर कोटा कॉरिडोर में भी शुरू हुए दर्शन। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी 6 उप मंदिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आज से टिकट बुकिंग शुरू। 15 जून को लखनऊ से उड़कर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। 1 घंटे में पूरा होगा हवाई सफर। देश में रेलवे की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में शानदार खबर। पहली बार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। राजस्थान के कोटा रेलवे रूट पर हुआ सफल स्पीड ट्रायल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। द्वारका में 806 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज। हेल्थ केयर सिस्टम को मिलेगी मजबूती। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी का सेना को सलाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बदली डीपी। आतंकवाद के खिलाफ सेना ने भरी हुंकार। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। भगवान बद्री विशाल के दरबार में लगा भक्तों का तांता। बाबा केदार के दर्शन को हर रोज बांटे जा रहे 25,000 से ज्यादा टोकन।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है वो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर करने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। फैक्ट चेक में आज जिन दो खबरों के बारे में चर्चा आज हम करेंगे, बात होगी सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के घर और टीएमसी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश का है, जहां स्कूली छात्राओं के पास जाकर एक आदमी ने अश्लील हरकत की। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानेंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक घर में लगी आग को देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के घर और टीएमसी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। जब हमने वायरल दावे की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करके टीएमसी को सत्ता से बाहर कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पूरे आत्मविश्वास के साथ जीत का चौका लगाने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन बीजेपी की रणनीति का तोड़ वो खोज नहीं सकी। ममता बनर्जी को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो 100 का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाई। दूसरी ओर बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर दो तिहाई से ज्यादा बहुमत हासिल कर लिया। सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक घर में लगी आग को देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के घर और टीएमसी के कार्यालय में आग लगा दिया है। वीडियो पोस्ट कर यूजर ने लोगों से कोलकाता बंद करने के लिए भी कहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि सीआरपीएफ के कथित समर्थन से बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़े कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के घर और एक टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी। ममता पर हमले की भी खबरें हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं, आज कोलकाता को बंद कर दो, यह सम्मान का मामला है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के घर और टीएमसी के कार्यालय में आग लगा दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया, आप भी सुनिए। ये आवाजें बांग्ला में है, मतलब यह है कि वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने यह जानने की कोशिश की कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे जिस घर को ममता बनर्जी का बताया जा रहा है, क्या वाकई वो घर ममता बनर्जी का है। अब हमने इसकी तहकीकात की तो ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट इलाके में रहती हैं। हमने उस घर की तस्वीर और वायरल वीडियो में नजर आ रहे घर की तस्वीर की तुलना की। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ है वायरल वीडियो और दूसरी तरफ है कोलकाता के कालीघाट में स्थित ममता बनर्जी का घर। आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा, मतलब ये है कि वीडियो में नजर आ रहा घर ममता बनर्जी से इस घर का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा दिन दहाड़े घर को इस तरह आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन उस दौरान सुरक्षा में मौजूद जवान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, ये भी काफी अटपटा लगता है। 4 मई यानी कि बंगाल के नतीजों के दिन इस वीडियो को वायरल किया गया है। अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट्स में ये खबर सुर्खियों में होती और टीएमसी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को हवा देने से पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को इंटरनेट पर भी खंगाला। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही? सच और झूठ क्या है, खुद ही देखिए।
3: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच की। वायरल दावे की जांच के लिए हमने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स निकाल कर उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेबसाइट पर 16 जनवरी 2026 को छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को अपलोड किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं पर हमला हुआ है। सिलहट जिले के गोवाई घाट के नंदिर गांव संघ के बहौर गांव में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने वीरेंद्र कुमार डे के घर पर आग लगा दी। एक बांग्लादेशी पत्रकार ने भी 16 जनवरी 2026 को एक्स अकाउंट से वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, बांग्लादेश के सिलहट जिले के गोवाई घाट उपजिला की नंदिर गांव यूनियन के बहौर गांव में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने वीरेंद्र कुमार डे और जुनू सर जो पेशे से शिक्षक हैं उनके घर में आग लगा दी। एक आधिकारिक वेबसाइट पर 16 जनवरी 2026 को इस घटना से संबंधित खबर को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार पूर्वी बांग्लादेश के सिलहट जिले के कोवाई घाट में विकास रंजन देव के घर में आग लगने की घटना हुई। पुलिस सब इंस्पेक्टर दीदार ने बताया कि यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। विकास ने पुलिस को बताया कि उनका मानना है कि यह घटना पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई एक दुर्घटना थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ममता बनर्जी का घर जलाने का दावा झूठा है। हिंसा से जोड़कर वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश का है, इसका बंगाल से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है जहां पर स्कूली छात्राओं के पास जाकर एक आदमी ने अश्लील हरकत की। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए योगी सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
3: दो स्कूली छात्राओं के सामने गंदी हरकत करते एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें हिजाब पहने हुए दो स्कूली छात्राएं किसी गली से गुजरती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान एक आदमी धीरे धीरे पहुंचता है और जब लड़कियां उसके करीब पहुंचती हैं तो वो अश्लील हरकत करता है। जिन्होंने भी ये वीडियो देखा उसने जमकर अपनी भड़ास निकाली। कुछ लोग इस वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर शेयर कर रहे हैं। एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा कि इस जिहादी को इतना मारना चाहिए कि न दिखने लायक रहे न बताने लायक रहे। कुछ ने तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में सख्त कार्रवाई की अपील भी की। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, योगी जी न्याय कीजिए, स्कूल से लौट रही छात्राओं के सामने युवक की गंदी करतूत, बीच सड़क पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत, आखिर कब सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां, योगी जी तक पहुंचाओ, इस दरिंदे को सलाखों के पीछे भेजो। सोशल मीडिया पर बड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को वायरल करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है जहां पर स्कूली छात्राओं के पास जाकर एक आदमी अश्लील हरकतें करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल वीडियो का सच जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ये वीडियो में कुछ बांग्ला शब्द लिखे हुए नजर आए। इससे ये इशारा मिलता है कि वीडियो उत्तर प्रदेश का नहीं है बल्कि कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई आधिकारिक रिपोर्ट भी नहीं मिली, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के से इस वीडियो का कोई ताल्लुक होता तो कहीं ना कहीं ये वीडियो के बारे में जानकारी जरूर मिलती, ये खबर सुर्खियों में भी होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर हमने वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है? हमारा अगला सवाल यानी कि सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही? अब देखिए सच और झूठ क्या है।
10: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट की 30 अप्रैल की एक वीडियो रिपोर्ट में ये मिला। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर की है। इस घटना के बाद से इस इलाके की स्कूल जाने वाली लड़कियों के मन में डर बैठ गया था। इस घटना के बारे में कई बांग्लादेशी आउटलेट्स ने खबरें छापी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहे शख्स का नाम महमूदुल हसन है। पुलिस ने 29 अप्रैल को सिराजगंज इलाके से हसन को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा था और वो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने हसन पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। साफ है जिस वीडियो को भारत का बताकर शेयर किया जा रहा है वो असल में बांग्लादेश का वीडियो है। हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
11: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
12: अंडमान निकोबार में समुद्र के अंदर ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बना है जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊपर कर दिया है। आलम यह है कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की हर तरफ चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। दरअसल स्वराज द्वीप पर पानी के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाया गया। जानकारी के मुताबिक रविवार को हैवलॉक द्वीप यानी स्वराज द्वीप पर पानी के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। बताया जाता है कि उपराज्यपाल डीके जोशी सहित 14 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और 22.3 मीटर ऊंचा मानव पिरामिड बनाया। इतना ही नहीं, इस दौरान वो लोग 3 मिनट तक पानी के अंदर रहे। ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसके हाथों में उंगलियां नहीं है, फिर भी वो बड़ी मेहनत और सुंदर तरीके से सड़क किनारे लगे माइलस्टोन को पेंट करते हुए नजर आ रहा है। शख्स उस माइलस्टोन पर बहुत ही सुंदर तरीके से कैलीग्राफी कर रहा है। पत्थर पर उसकी लिखावट इतनी सुंदर है कि इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई उसकी इस टैलेंट की तारीफ करता नहीं थक रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि ये शख्स पूरे फोकस के साथ अपना काम कर रहा है। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई जिंदगी से शिकायत, बस मेहनत और लगन से अपने काम को परफेक्ट तरीके से पूरा कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। एक लड़का अपनी माँ के पास खड़ा नजर आता है और वो बोलता है, ये गाना मेरी मम्मी के लिए जो मेरे हर दर्द में मेरे साथ खड़ी रहती है। इसके बाद तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है गाने का एक पार्ट शुरू होता है और वो लड़का साथ ही साथ गाते हुए भी नजर आता है।
2: मैं रोया तू रोई, मैं हंसने
12: वीडियो में वो मैं मुस्कुराया तू मुस्कुराई, मैं रोया तू रोई वाला पाठ गाता नजर आता है। वीडियो बहुत ही प्यारा है, लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

जिससे बिल्कुल कॉन्सर्ट वाला फील दे दिया गया। टीचर ने कुछ इस तरह से बच्चों को सिखाया कि उन्होंने दूर बैठकर भी सुर ले ताल मिला लिया। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और टीचर की जमकर तारीफ कर रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कैरिकेचर आर्टिस्ट एक विदेशी कपल का कार्टून बनाता नजर आता है। पति के सिर पर बाल काफी कम है तो आर्टिस्ट ने उसी पर केंद्रित होकर स्केच बनाया जिसमें उसकी पत्नी उसके बाल हटाती दिखती है। और ये देखकर विदेशी कपल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रही है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। एक महिला ने कबाड़ में पड़ी बोतल से शानदार मिनी एक्वेरियम बनाया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने बोतल को साफ करने के बाद उस पर ग्लू गन की मदद से पिस्ता के छिलके चिपका दिए। उन छिलकों को महिला ने पानी में पड़े पत्थर और मछली का आकार दिया और फिर उसके बाद उन्हें पेंट किया। जैसे ही बोतल में पानी भरकर ब्लू पेंट का ब्रश उसमें घोला जाता है, तभी उसमें एक जादू दिखाई देता है। इस कलाकारी को देखकर यूजर्स हैरान हैं। भारतीय शादियों का उत्साह और मेहमान नवाजी तो वैसे ही दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस दूल्हे के स्वैग और सादगी ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। दरअसल इटली के बोलोग्गा के रहने वाली मिरेला क्रिस्टीना मुरारियो अपने दोस्तों के साथ भारत में हाल ही में सफारी ट्रिप का आनंद ले रही थी। तभी रास्ते में एक सजी धजी कार उनकी जीप के बगल में आकर रुकी। कार में दूल्हा सवार था, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए विदेशी पर्यटकों की ओर अपनी शादी का कार्ड बढ़ाया और उन्हें शादी में आने का न्योता दे दिया। मिरेला ने इस खूबसूरत मोमेंट को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, कभी कभी एक हॉर्न आपके पूरे दिन की कहानी बदल देता है। हम टूरिस्ट बनकर आए थे, लेकिन इस एक मोमेंट ने हमें गेस्ट ऑफ ऑनर जैसा फील करा दिया। इस वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। शादी हो रही है इनकी, दूल्हा बने हैं, रस्में निभाई जा रही है, पर इन्हें देखकर लग रहा है कि इन रस्मों में इनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। हो भी कैसे, क्रिकेट के फैंस मामूली थोड़े ही होते हैं, उसमें भी ये जनाब तो आरसीबी फैन बताए जा रहे हैं। इनका बस चलता तो ये आईपीएल सीजन में शादी ही नहीं करते, लेकिन अब जब कर ही रहे हैं तो थोड़ी तो अपनी मन की कर ले। रस्म आप निभाएं, हम अपनी आरसीबी से वफादारी भी निभा लेंगे। आईपीएल मैच देखते हुए शादी की रस्म निभाते इस दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

सचमुच प्यार की कोई भाषा नहीं होती, इसे बिना बोले भी महसूस किया जा सकता है। अब इन्हीं देख लीजिए कितनी मजबूत बॉन्डिंग है दोनों के बीच, बिना कहे भी समझ रहे हैं एक दूसरे की भावनाओं को और उसका सम्मान भी कर रहे हैं। आखिर दोस्त नहीं समझेगा दिल की बात तो भला और कौन समझेगा। देखिए कैसे आराम फरमाया जा रहा है, सोए सोए ही खाना मिल रहा है और प्यार भी लुटाया जा रहा है। दोनों के बीच की बॉन्डिंग ने इंसान और जानवर का फर्क मिटा दिया है। ये वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील की उफनती और जानलेवा लहरों के बीच एक शख्स ऐसे आराम से तैर रहा है मानो वो अपने घर के बाथटब में लेटा हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वो झाग बनकर

0: सफेद नजर आ रहा है, लेकिन शख्स के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान तक नहीं है। ये वीडियो युगांडा में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, कमेंट्स की बाढ़ से लग गई। नेटिजन्स अपनी आंखों देखी पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कोई दिखावा नहीं बल्कि उन स्थानीय लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका है, लेकिन सुरक्षा कारणों से पर्यटकों को ये गतिविधि करने की अनुमति नहीं है, भले ही आपको तैरना क्यों ना आता हो। आम पब्लिक के लिए यहाँ सिर्फ वाइट वाटर राफ्टिंग की ही अनुमति है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Some people think that Talk Sport's just the clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: और अब खबर अयोध्या से। आपको बता दें, यहां पर राम मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कोशिश तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी और राम मंदिर ट्रस्ट के लोग मौजूद हैं। पुराने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के साथ नई व्यवस्थाओं पर विस्तार से मंथन किया गया।